करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें, और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट

नमस्कार दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनना मता मता स्वागत है। ते मैं यहाँ डोगरन सोल नेहा शर्मा दे आई हूँ डोगरी रेडियो। ते आज मैं तुसें लगी हूँ सुनान डुगर प्रदेश दे डांस। जियां कि हर प्रदेश का कोई ना कोई फोक डांस होंदा है, उआं के इत्थे भी कुछ फोक डांस होंदे ने। जिहड़ा सारे फोक डांसिंग कोला जिहड़ा सब तो मशहूर डांस है फोक डांस, वो है कुड डांस। ते बाकी होर जिहड़े फॉर्मन डांस दे उन फुमनी, चौकी, भांगड़ा, गिद्दा, किकली, ढोल डांस ते कन्ने के कन्ने जागरण। ते ये है कुछ जिहड़े फोक डांस डुग्गर प्रदेश च होंदे। तो सुनो इस एपीसोड का एक गीत।

बैक दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनना माता माता स्वागत है। मैं यहाँ डोगरन सोल नेहा शर्मा ते अस गल करा दे डुग्गर प्रदेश दे नृत्य दे जो इत्थे दे फोक डांसेस ने जिंदे च मैं जेड़ा पर्सनली पसंद है ते जो कि बड़ा गे अट्रैक्टिव ते बड़ा गे मशहूर डांस है वो है कुड डांस। कुड डांस जेड़ा है उस स्पेशली कीता जांदा है देवते दी स्तुति दे टाइम या फिर खेती दे टाइम हार्वेस्टिंग दे टाइम ते कुछ मेले भी ये ने जिथे जरूर एक कुड डांस परफॉर्म होंदा है। कई ऐसे त्यौहार ने बैसाखी का त्यौहार है लोहड़ी का त्यौहार है उस टाइम पर भी ये परफॉर्म किया जाता है कुड डांस। लोग अपने अंदर जिहड़ी खुशी है वह व्यक्त करते हैं इस डांस के जरिए देवते की स्तुति करते हैं इस डांस के जरिए। तो कन्ने के कन्ने एक अलग तरह की ड्रेस होंगी है जो इस डांस करने को पहले लोग वेयर करते हैं। ये डांस बेसिकली मेल डोमिनेटिंग डांस है। वैसे तो अजकल कुछ कॉलेज स्कूल कोरियोग्राफर्स की करते हैं ये विच कुड़ियाँ भी करुड़ते हैं ऐड पर एक टिपिकल जेड़ा डांस है फोक वो मेल डोमिनेटिंग डांस है जिहदे च जिन्ने भी भाई ने वो सैमी सर्कल ते फुल सर्कल च घूमते हैं गोल गोल कुछ स्टैप करते हुए बड़े हल्के हल्के मिठे मिठे स्टैप करते हैं ये। तो ये स्टैप करते करते जेड़ा ये डांस का रिदम होंदा है उहदे कन्ने कन्ने इंदी जिहड़ी लय है वह बढ़ती ते घटती है। ये डांस किया जाता है एक स्पेशल तरह के जो डोगरी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ने उनके कन्ने ते कन्ने के कन्ने बांसुरी दी ते ड्रम दी आवाज़ ढोल दी आवाज़ भी बिच शामिल की जाती है। बड़ा ही अलग तरह का कुड डांस का म्यूजिक होंगे जो कन्ने ही सुनेंगे बड़ा अच्छा लगता है ते इहदे पर बड़ी मिठी मिठी डांस की लय बनती है। तो सुनो अगला गीत।

सुनांदे ही डुग्गर प्रदेश दे कुट डांस दे बारे च मेरे द्वारा में आ डोगरन सोल नेहा शर्मा ते ए जिया कि मैं तुसी दस्या नाग देवता दी स्तुति च भी एक किता जांदा है ते जम्मू प्रदेश दे जेड़े कि पहाड़ी इलाके नु उत्थे ज्यादा किता जांदा है भद्रवाह होया मानतलाई होया पर अजकल कुछ लोग ब्याह शादियों च भी एक स्पेशल अट्रैक्शन वास्ते कुट डांस ट्रुप इनवाइट करदे ने ते अपने कल्चर ही प्रमोट करदे ने कुसे ना कुसे बहाने करदे तुस भी यूट्यूब लिंक पर चेक करी सकते हो कुड डांस से उत्थे तुस देखी सकते हो कि कितना अच्छा एक वाइट कलर दी ड्रेस होंदी है जेड़े सारे मेल पांदे न चूड़ीदार जेड़ी डोगरी साड़ी ड्रेस है चूड़ीदार पजामी ते कन्ने एक उपर एक कमीज पांदे ने गोल पूरे इंदी जेड़ी अटायर होंदी है वो चिट्टे रंग दी होंदी है ते कन्ने के कन्ने पिंक या लाल रंग दी ये ओदे उपर कुछ चुन्नी टाइप कुछ बंदे न ते बड़ा के अच्छा लगदा है सारे इको ड्रेस सेमी सर्कल ते सर्कल च घूमदे ते म्यूजिक दी जड़ी मिठी मिठी लय है बड़ा गै अच्छा समा बनांदी है हुन मेरा भी टाइम होई दा जाने दा ते तुस मी भी इजाजत दियो मैं फिर परती आगी टिल देन बाय बाय नमस्कार दोस्तों।

0: ਸੋ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ 8282, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ ਜੀ।
1: ਗੁਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ,
0: ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ।
1: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸਕਾ ਆਪਨੇ ਸਹੀ ਕਹਾ ਥਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਆਂਸਰ ਹੈ
0: ਜੀ
1: ਔਰ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਂਸਰ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕੋ ਹਮ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਹੇਂਗੇ।
0: ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ, ਆਪਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਦਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਤਾ ਦਿਆ। ਯਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਵੀ ਵੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਂ ਹੀ ਹੋਗੀ, ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਕੀ ਵੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਂ, ਯਾ ਤੋ ਮਾਸੀ ਲਗਤੀ ਹੋਗੀ ਯਾ ਮਾਮੀ ਲਗਤੀ ਹੋਗੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੋ ਲਗਤੀ ਹੋਗੀ। ਆਪਨੇ ਆਂਸਰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਦਿਆ।
2: ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਤਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ, ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜੀਆ ਆਂਸਰ ਮਿਲੇਗਾ
0: ਜੀ। ਔਰ ਆਪਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ।
1: ਆਦਮ,
0: ਆਜ਼ਮ, ਆਦਮ ਜੀ। ਸੋ ਆਦਮ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਸਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਚਲੋ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਆਪਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਟਕੇ ਆਪ ਚੀਜ਼ੇ ਬਤਾਤੇ ਹੋ, ਤੋ ਆਪ ਮੁਝੇ ਇਹ ਬਤਾਓ ਆਪ ਕਰਤੇ ਕਿਆ ਹੋ?
1: ਮੈਂ ਲੀਮੋ ਡਰਾਈਵਰ।
0: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਕੋ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਂ?
1: कनाडा में तो मुझे ओवर 33 ईयर हो गए।
0: सो देखो, आपका एक्सपीरियंस बोलता है, आपके आंसर्स जो आपने दिए हैं वो सीरियसली आपको अपने एक्सपीरियंस से ही मिले। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो पे कॉल किया और उम्मीद करती हूँ आज आपका दिन बहुत ही प्यारा हो।
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਦੋ ਕਾਲ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ 1050 सनीवेल गेट दी लोकेशन तो अज असी दवांगे एक प्लेट छोले भटूरे और इन्हां दे छोले भटूरियां दी की तारीफ करां थोड़ी तारीफ में बताएं आप पंकज जी,
2: जी, जी, जी। इनका जो छोले भटूरे जी इसके पहाड़गंज के छोले भटूरे है जी नॉट अ सिंपल छोले भटूरे और मतलब जो भटूरे आप कोई भी नॉर्मल रेस्टोरेंट पे खाते हो उसको लिए आपको थोड़ा ऑयली मिलेगा जब आप खाओगे उसके बाद में थोड़ा सा दिन भर आपको भूख नहीं लगेगी लेकिन इनकी बात संतोष जी मैं कहूँ तो अलग ही है क्योंकि इनका जो प्रिपरेशन है वो घर जैसा होता है और जो टेस्ट है जो ढाबे जैसे होती है तो इसलिए तवा किचन पे जो भी आप फूड मंगाते हो आपको क्वालिटी के साथ जो इसकी टेस्ट है सबसे बढ़िया मिलती है इसीलिए पहाड़गंज के छोले भटूरे जो भी लिसनर है आज को उनको फ्री मिलेगा और जब आप खाओगे तो आपका डाइजेशन पूरा प्रॉपर होगा नॉट ओनली दिस संतोष जी जो तवा किचन है ये लोकेशन काफी बिजी लोकेशन है इनकी जो अगर सुबह सुबह किसी को परांठे खाने हैं तो उनके लिए दारा सिंह परांठा इज वन ऑफ द बेस्ट इतना बड़ा परांठा होता है चार टॉपिंग अलग अलग होती है और उसके साथ रायता और उसके साथ जो दही मिलता है और उसके साथ अचार उसके और उनकी एक स्पेशल डील भी लगी है जी। दारा सिंह परांठा पे आप दो दारा सिंह परांठा लोगे उसके साथ आपको दो चाय भी मिलेगी और सिर्फ 1599 में ये आपको डील मिलेगी जी तवा किचन की तरफ से
0: वाओ सो इना दी डील हुणे मिल रही है जे तुसी जाओगे तो तुसी डॉलर खर्चोगे लेकिन जेडे कॉलर सानू कॉल करके आंसर दोगे उन्हां नू एक असी फ्री च चकावांगे सो तुसी सारे ने कॉल करनी है 905-673-3337 905-673-3337 ते तुहाडे लई दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सो अजे तक साडे कोल काफी कॉल्स आ रही है जो कि सानू डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिल रहे हो और देखदे हो तुसी की आंसर दिंदे हो सो आदम जी जेडे हैगे आ ओह मेल्स तो नंबर लेट्स सी बाकी हमारे भाई कहाँ है और हमारी बहनें कहाँ हैं सो तुसी कॉल करनी है ते दसना है मासी दी सास दे पोते दे बापू दी नो दी माँ दे मुंडे दी कार वाली नो असी की कहांगे क्या कहेंगे पंकज जी बताएं
2: क्या कहेंगे
0: पंकज जी तो सोचा चे पे हो यार
2: देखो संतोष जी आपने सबसे पहले उसमें सास कहा तो मैं उधर डर गया दो बारी बापू कहा तो डर गया
0: सो सारे सो सारे दर्द नहीं गए रिश्ते दे विच ओ रिश्ता लभदे लभदे सो तुसी कॉल करनी है 905-673-3337 905-673-3337 ते तुसी सारे ने कॉल करके सानू दसना है की आंसर हैगा

0: September 18, 7 p.m. at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दिखी, उम्मीद कर रहा इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे।
2: मैं आ जा तो मैं नाल नचिए नचिए पाच बाहपा मैं आ जा तो मैं नाल नचिए।
0: For tickets visit Ticketmaster. For information call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: तुसी अपने फोन प्लान पे बहुत पैसे दे रहे हो। सेलुलर पॉइंट ते असी तुहाडे लई लेके आया बहुत ही वड्डी सेविंग्स। बेस्ट फोन प्लान्स ते बिना किसे शर्त तो। चाहे तुसी बिजनेस या फैमिली प्लान्स च सेविंग चाहुंदे हो। नो कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन या लेटेस्ट फोन चाहिदा सब तो बेस्ट कवरेज नाल। सेलुलर पॉइंट ते तुहानू सब कुछ मिलेगा। विजिट करो सेलुलर पॉइंट सेव टुडे इट्स दैट इजी। अपनी नियरेस्ट लोकेशन cellularpoint.ca ते वेखो। सेलुलर पॉइंट मोर फोन्स मोर प्लान्स मोर चॉइस।
4: जब एच के मूवर्स का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। एच के मूवर्स होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स वी ऑल्सो डू स्टोरेज 30 years एक्सपीरियंस वी सर्व विद अ स्माइल। एच के मूवर्स गिव अस अ कॉल मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704 416-524-6704।
5: हासल फ्री मूविंग के लिए एच के मूवर्स।

0: हो कैसे यार गीत गाए यार, कमाल हुई है। लेजेंड्स बंदे। और इस गीत नूं अगला गीत जिहड़ा मैं तुहाडे वास्ते ला रहा हां, वो गीत तुहाडे वास्ते मैं स्पेशली तौर ते एच के मूवर्स वल्लों स्पॉन्सर कर रहा हां। और मूविंग तुसी करा रहे हो एडमिंटन तो, कैलगरी तो, जां तुसी वैनकूवर तो, जां साडियां फैमिलीज़ ने इत्थों मूव होना उस साइड वल जाना है कि मॉन्ट्रियल ऑटवा तो कोई चीज़ जां तुहाडियां पईयां गड्डियां पईयां सज्जे खब्बे गड्डियां मूव करवाउणियां, तो एच के मूवर्स वाले वीरां नूं कॉल कर लो। 416-524-6604 ते कॉल कीती जा सकदी है, 416-524-6604 ते कॉल कीती जा सकदी है। गड्डियां तुहाडियां खड़ियां बई इधर एडमिंटन कैलगरी वाले साइड ते, उधरों वापस इधर आ जाणगियां। जे इधर उधर भेजनी है फिर ही तुहाडे वास्ते नंबर इक्को ही है, 416-524-6704 ते कॉल कीती जा सकदी है। A1 केक एंड पेस्ट्रीज वालियां दा असीं स्पैशली तौर ते थैंक यू वी कर रहे हैं, और हंस राज हंस दे शो नूं वी सपोर्ट कर रहे हैं। और 1075 लोरी मार ड्राइव दे उत्ते है, प्योर वैजीटेरियन केक्स जे तुसीं अपने बच्चियां दे फंक्शन पार्टीज वास्ते बनाने हैं, बर्थडे पार्टी वास्ते, कोई एनिवर्सरी पार्टी है, वैडिंग दे केक, इन्हां को बहुत ज्यादा वड्डे वड्डे केक हुंदे आ, 4-5-6 स्टैप्स वाले केक जे तुसीं बनाउणे आ, ते तुहानूं पता है फिर A1 केक एंड पेस्ट्री दा वधिया केक होर कौन बनाऊ। सब तो वड्डी गल ये हुंदी है कि प्योर वैजीटेरियन केक हुंदे आ। कई वारी विआह शादियां रिसेप्शन च आपणे बहुत परिवार इदां दे हुंदे आ, बजुर्ग आपणे बीजी यानी पापा जी यानी जिन्हां ने अमृत पान कीता हुंदा, ते कई वीर ओह केक खांदे नहीं। नोट करियो, ये बड़ियां चीज़ां हुंदियां। कई वारी कदे विआह शादियां च ना जिहड़े परिवारां ने कई वारी गुरू का अमृत पान कीता हुंदा ओह नहीं केक खांदे, ओह कहिंदे नहीं जी इहदे च आंडे पाए आ। पर गल यह है कि इन्हों तो बिस्कुट भी आंडिया तो बिना वाले, केक भी आंडिया तो बिना वाले, मटरी लैनी आंडिया तो बिना वाले, प्योर वैजीटेरियन केक तैयार करते हैं A1 केक एंड पेस्ट्रीज वाले। और तुसी भी घर भी तुहाडे बर्थडे है बच्चे, फ्रूट केक बड़ा लाइक करते हैं। फिर अजकल एक नवी चीज़ इन्हें तैयार की है, सपोज करो तुहाडे बच्चे का बेबी बॉय है, उन्होंने पिंक कलर का तुसी जिहड़ा गर्ल्स वास्ते जां बॉय वास्ते लाइट ब्लू डार्क ब्लू कलर के केक तुसी कलरफुल तैयार करने वो कर देंगे। फिर कई बार बच्चों की मनपसंद कोई गेम होंदी है, कोई सॉकर गेम होंदी है, कोई वॉलीबॉल होंदी है, कोई फुटबॉल होंदी है, कोई आइस हॉकी की गेम होंदी है, उन्होंने उत्तों स्टाइल बना दें नाल उहदी फोटो ला के, वो बच्चे की जर्सी पाई होंगी जी कि उस टीम की, वो जर्सी वाली जी फोटो उत्ते ला देना तुहाडे बच्चे के केक के उत्ते। तुसी भी केक बनवाओ A1 केक एंड पेस्ट्रीज वाले को, 905-564-2663 ते कॉल की जा सकती है, 905-564-2663 ते कॉल की जा सकती है। प्रोग्राम पंजाबी विरसा, हरप्रीत सैनी जी क्या हाल है आपके?
1: हाय दिस इज हरप्रीत सैनी फ्रॉम टॉप।

0: 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो
2: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
1: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल
2: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी
1: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
2: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगियां
1: बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
2: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
3: 32-55-80
4: 98
3: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
4: काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
3: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828
0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton.

0: गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टावला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादी हैं, उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज्जा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साड़ी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल तुहानू जोड़ के रखांगे और इहदे नाल नाल वतनों दूर 1 बजे तुहाडे लई पेश कीता जाएगा। हुण तो लैके 2 बजे तक साडे स्टूडियो दे नंबर रहणगे 905-799-0999-905-799-0999। उम्मीद करते हैं तुहाडा वीकेंड भी अच्छा गुजरिया होगा। सब तो पहला छतरी छाता रिपोर्ट हाजिर है। अज सूरज सिंह 6:55 ते आया, 7:30 ते चले जाना। मामा चांस्यों रात नूं 10:58 ते आया ते 8:15 ते शाम नूं जाना। अज दा तापमान 22-23 तक जाएगा, सूरज चमकदा रहेगा। कल नूं चखड़ चोले थंडरस्टॉर्म सब कुछ आएगा, नेरी नूरी भी आएगी, तापमान 25 डिग्री। बुधवार नूं मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड हल्के हल्के मीह दे नाल तापमान 26 डिग्री। थर्सडे नूं सारा दिन बदलवाई रहेगी, छतरी छाता दी लोड़ पेगी, तापमान 24 डिग्री। फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन 26 डिग्री तापमान रहेगा, सूरज चमकता रहेगा। स्पोर्ट्स के खेत्र विच ब्लू जी वाले कल 8-1 जिते, परसों भी जिते सी, लेकिन दूसरे पासे क्लीवलैंड वाले भी जित रहे। सो हुण भी इन्हां दी एक गेम पिछे चल रहे हैं प्लेऑफ तो। अज शाम नूं डिट्रॉयट नाल मैच होएगा। कौंसल दी इलैक्शन दे बिगल वजन तां देर हो गई, लेकिन आंकड़े शांकड़े ते लल्ला भब्बा होण आउण लग्गिया। साडे ब्रैम्पटन च भी सुख नाल बहुत जणे खड़े ने। मेयर लई किन्ने खड़े आ, मेयर लई 12 जने खड़े आ, नाम सिर्फ पैट्रिक दा ही चलदा। वार्ड 1-5 च 9 खड़े आ, 2-6 च 9 खड़े आ, 3-4 च 6 खड़े आ, 7-8 च 7 खड़े आ, 9-10 च 8 खड़े ने। देखदे आ की बनदा। उधर मिसिसागा दे विच जिहड़ी मेयर दी इलैक्शन आ, उह 3 बीबियां दे विच ही समझो। एक तां पैरिश जिहड़ी ऑलरेडी किसी जमाने च एमपी हुंदी सी, हुण उत्थे दी मेयर है, ते क्रॉम्बी ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਬਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜਾ ਲੜੀ, ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਭੱਜ ਕੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਝੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਦੋ। ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਹੈ ਡਮਰੀਲਾ, ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ।
1: Highway 401 in Napanee. Quick Truck Lube, the one-stop shop. 519-622-0660 ja quicktrucklube.com. QTL, because we care. Quick Truck Lube. ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप। 519-622-0660 जां quicktrucklube.com। QTL, because we care.
0: Are you ready? Ikka Junction Lay 647-429-4040. Catering karoni hai choti vade function lay, no problem. 647-429-4040. Live cooking karoni hai kare, no problem. 647-429-4040. Tusi inna de banquet hall ya lounge vich choti vadi party karni hai, no problem. 647-429-4040. 647-429-4040.
2: Culture of Punjab is sponsored by Airport Nissan. For the best deals in Brampton, come to Airport Nissan at the corner of Airport Road and Queen Street, or call 905-791-4900.
3: ਹੁਣ ਟੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜਸ਼ਨ ਟੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
4: ਜਸ਼ਨ ਟੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ।
3: ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ,
4: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਮੌਕਾ,
3: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣਗੇ ਫਰੇਮ ਟੈਂਟਸ, ਹਾਈ ਪੀਕ ਟੈਂਟਸ, ਫਲੇਅਰ ਟੌਪ ਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਪੌਪ ਅਪ ਟੈਂਟਸ।
4: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਟੇਬਲਸ, ਚੇਅਰਸ, ਫਲੋਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ।
3: ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ, ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਸ਼ਨ 416-294-2857
4: 416-294-2857।
3: ਜਸ਼ਨ ਟੈਂਟਸ, ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੁੱਕ।
5: ਤਾਇਆ ਸਾਡਾ ਮੀਟ ਮੱਛੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਵੈਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਫੋਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ।
6: ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਏਅਰਪੋਰਟ।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: The wait is finally over. Gordy Kumin of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.
2: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
3: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
2: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
3: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
3: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
4: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
3: 416-509-1509
4: और विजिट insuranceforyou.ca।
5: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
6: 4K
7: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल इंजॉय करने वर्ल्ड बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है। ते नाले टिलो वीडियो को गुरबानी रेडियो भी है, ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। और दस क्या चाहिए?
8: क्या कह रहे हैं
7: यहाँ पर? ओ पाजी, सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
9: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
7: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ, एबनीजर एंड गौर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com। और कोई सेवा?
10: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
11: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
10: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
12: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा।
13: What's up everybody, this is Jasmine Sandler, ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निजर।

0: ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਰੀਮੈਕਸ ਗੋਲਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਗੌਡੀ ਖੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਸਾਊਥ ਕੈਲਡਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਕੈਲਡਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ, ਹਾਈਵੇ 10 ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ 410 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ 15 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁਣ ਸੇਲ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਕੈਲਡਨ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਅੱਜ ਹੀ ਪੱਕੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਅੱਜ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ।
1: अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कृषि आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
2: 4K
3: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल इंजॉय करने वर्ल्ड बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है ते नाले टिल्लो वीडियो को गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री होर दस क्या चाहिए
4: क्या कह रहे हैं
3: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
3: पर टिल्लो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गौर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com होर कोई सेवा।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: एक लाइफ है जिसे लव है,
2: ये कहते मुझसे सब है,
3: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है।

0: One-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self-employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: Intezaar hun khatam hoya. Remax Gold Realty ਦੇ ਗੌਡੀ ਖੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਸਾਊਥ ਕੈਲਡਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਕੈਲਡਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ, ਹਾਈਵੇ 10 ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ 410 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ 15 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁਣ ਸੇਲ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਕੈਲਡਨ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਅੱਜ ਹੀ ਪੱਕੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਅੱਜ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ।
3: अगर अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
4: 40 years in entertainment business.
5: पर ढिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां ढिलोवीडियो.com। होर कोई सेवा
6: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रामटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888। दैट्स 9054608888।
6: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस। स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ

गर्मी का सीजन भी होवे। किते ना किते बहुत बड़ी चुनौती हैगी बिजली की एड्डी बड़ी डिमांड नूं पूरा करना, भी ये डिमांड किवें पूरी होवेगी, कित्थों कोला आएगा, क्योंकि कोले की भी बहुत बड़ी समस्या चल रही हैगी, क्योंकि कोला आऊगा तो ही बिजली पैदा होनी हैगी। मौसम बेहाल हो चुके ने लोग, पर थोड़िया थोड़िया खबर ये भी आ रही नहीं कि भी चलो रात के समय या अर्ली मॉर्निंग थोड़ी जी ठंड का ठंड फील होने लगी है, बट गर्मी हले भी पंजाब दे विच हैगी आ। अगली गल आपां करांगे पंजाब दे विच जिहड़े नशे ने, नशियां दी दलदल दे विच बहुत नौजवानी पीढ़ी जिहड़ी साडी इस वक्त फस चुकी हैगी, इहदे उपर सरकार नूं बहुत वड्डी जिहड़ी हैगी आ कारवाई करन दी जरूरत है। पंजाब पुलिस ने की किया, नशे तस्करी खिलाफ़ एक वड्डी कार्रवाई की हैगी, तो पुलिस मुताबक हज़ारां नशा तस्करां नूं गिरफ़्तार किया गया गा अते वड्डी मात्रा विच नशीले पदार्थ बरामद किए गए ने। पंजाब विच नशियां दी समस्या नूं खत्म करने लई सरकार अते पुलिस वल्लों मुहिम जारी है, पर इही कित्थे फड़े गए ने नशा तस्कर जां किहड़े शहर दी खबर आ उहदे बारे हले कोई बहुता स्पष्टीकरण साडे कोल नहीं पहुँच सकिया, पर इन्ना कु जरूर आ कि भी पंजाब सरकार आ जिहड़ी जां पंजाब पुलिस हैगी इह जरूर वादा कर रही है कि असीं नशियां दे उपर बहुत वड्डी जणदी जिहड़ा हैगा इह कम कर रहे हां। एक होर अहम खबर पंजाब तो जी आ रही हैगी, पंजाब विच नशा मुक्त पंजाब मुहिम लैके सियासी सरगर्मियां बढ़ रही नेगियां, क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी कि पंजाब दे विच हुण अपने लगातार पैर पसारन जा रही हैगी, जां कोशिशां चल रही ने कि असीं पंजाब दे विच अपनी निरपक्ष सरकार बनाईए, बेशक इह भी कैसियां लगाईआं जा रही नेगियां कि कुछ खेत्रां विच अकाली दल अते भाजपा दोनों पार्टियां रल के अपनी सरकार बनाने लई उत्सुक नेगियां, पर बीजेपी ते जां श्रोमणी अकाली दल बादल वालों हले तक इदां दा कोई भी बयानबाजी जां स्पष्टीकरण सामने नहीं आया जिन्हां नाल इन्हां दा गठजोड़ लगभग संभव आ, अंदर खाते लग रहा भी संभव आ, पर हले तक कोई अधिकारिक तौर पर कोई इदां दा मतलब सामने कोई चीज़ नहीं आ सकी भी जिहदे नाल इह हैगा। हुण बीजेपी ने 18 सितंबर नूं पठानकोट तो एक नशा मुक्त यात्रा शुरू करन दी जिहड़ी तैयारी कीती हुई हैगी, उह कहिंदे भी असीं पंजाब नूं उहनां ने मुहिम दा नां रख्या हैगा नशा मुक्त पंजाब, 18 सितंबर तो पठानकोट तो शुरू करनगे। इस मुद्दे नूं लैके पंजाब दी सियासत होर भी गर्म हो सकती है, क्योंकि जदों ओह पिंडां दे विच जां शहरां दे विच जाणगे आपो अपने काफले लैके तां फिर थोड़ा मोटा जरूर जणदी हैगी जिहड़ी इदां दी गल्लबात हो सकती है। हुण इक खबर लुधियाणे तो भी आ रही है, लुधियाणे विच पुलिस अते AGTF दी गैंगस्टरां नाल इक मुठभेड़ दी खबर जिहड़ी सामने आ रही हैगी, क्योंकि पंजाब दे विच इह गल हैगी आ भी गैंगस्टर थोड़ा जिहा पहलां नालों उपर उठ रहा हैगा, तो पंजाब पुलिस कह रही है कि असीं नूं दबाउण दी कोशिश कर रहे हां। पुलिस मुताबक इस कार्रवाई विच दो व्यक्तियों की मौत हुई है, पुलिस वल्लों मामले की होर जांच की जा रही है। तो जाते जाते आपां इह वी कहांगे कि खेडां नाल जिहड़ियां हैगियां मैनज एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी की मेज़बानी होण जा रही हैगी पंजाब दे विच पहली बार, इस तो पहला पंजाब दे विच मैनज एशियन चैंपियन ट्रॉफी की कदे भी मेज़बानी नहीं की। ये टूरनामेंट आ जिहड़ा ये 27 अक्तूबर तो लैके 5 नवंबर तक होवेगा, सब खेड प्रेमियों लिए बड़े माण वाली गल हैगी, क्योंकि जिहड़े हॉकी नूं प्यार करते हैं, क्योंकि हॉकी दे विच मोस्टली जिहड़े साडे प्लेयर ने ज़्यादातर वह पंजाब तो ही होंदे आ गए। सो कल कुड़ियां दा क्रिकेट दा जिहड़ा मैच सीगा इंडिया वर्सस श्रीलंका, उहदे विच वी जिहड़ी दी भारत दीआं कुड़ियां ने जिहड़ा हैगा उह ट्रॉफी जित्ती आ, 8वीं बार एशिया कप दी ट्रॉफी जित्ती हैगी, पर जिहड़ा एशिया कप दी ट्रॉफी पिछली बार भी जदों होई सीगी मुंडिआं ने जित्ती सीगी उदों जिहड़ी दी पाकिस्तान दा जिहड़ा क्रिकेटर सीगा जिहड़ा उन्होंने ट्रॉफी जिहड़ी दे रहे सी मोहन नकवी ने ट्रॉफी दित्ती सीगी भारतीयों नूं, बट इन्हां ने मुंडिआं ने इगनोर करता सी कि असी एशिया कप दी ट्रॉफी जिहड़ा पाकिस्तान दे हत्थ तों नहीं लवांगे। सो हीम इतिहास फिर कुड़ियां ने भी दोहराया गा कि कुड़ियां ने ट्रॉफी जरूर जित्ती है, पर उन्हां ने पाकिस्तान दे चीफ तों जिहड़ी दी ट्रॉफी लैण तों साफ इनकार कर दिता भी असी इह ट्रॉफी नहीं लवांगे। सो पंजाब दीआं आपां खबरां दी गल्लबात कीती हैगी, हुण जुड़ांगे एक मिठे जे ते खूबसूरत गीत नाल, उस तो बाद फिर वापस आउणे आ।

0: Friday, September 18, 7 p.m. at the Living Arts Center, Mississauga.
1: Pehla aaya si badi order dikhti, ummeed karda ha. Is baar bhi tusi aashirwaad doge.
2: Ve aa ja do me nal nachiye, nachiye baah ch baah pa. Ve aa ja do me nal nachiye.
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: Toronto, the Hartman Piara Radio. Days per day. Days per day.
4: For advertisements and information.
3: Information.
4: Call us now. 416-457-3381 416-457-3381 या फिर 416-725-2551 416-725-2551
5: अपने लाजवाब टेस्ट नाल पूरे ब्रैम्पटन नु दीवाना बना चुकी है किल स्वीट फैक्ट्री जिथे अवेलेबल है लजीज मिठाइयां दा खजाना जिदे स्वाद दा काल हो चुके है सारा जमाना सिर्फ इना ही नहीं उथों दे समोसे एक बार खाओगे ता बार बार खाओगे किल स्वीट फैक्ट्री जो बैंक्वेट हॉल एंड स्टोर्स नु होलसेल भी कर देने इथे अवेलेबल है 100% वेज खाना जिस करके तुसी लंगर समागम अते पार्टीज लाइक

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: मैं थोड़ा अपना वकील वकील ब्रिज मोहन पिछले 32 सालों तो अक्रॉस कैनेडा कार एक्सीडेंट्स लगियां गंभीर सट्टा पुलिस द्वारा लाए गए संगीन क्रिमिनल चार्जेस अते सीरियस इमिग्रेशन केसेस नाल कोर्ट कचहरियां च निजिठण दा साडा पूरा तजुर्बा है कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलने लई नहीं सी आख्या पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही माण महसूस हो रिहा है कि असी कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਐਟ bridgemohan.com
2: Wow, Mom, Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
3: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
2: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
0: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
4: जे तुसी भी करना चाहुंदे हो अपना खुद दा रेडियो प्रोग्राम तां अज ही सानू कॉल करो 647-504-1557
5: वेरी गुड क्या बात है जरूर कॉल करो यार क्यों नहीं करनी सो स्टूडियो च गलबात साडी थोड़े नाल हो रही है कि असी बड़ा अच्छा इशू या सिचुएशन डिस्कस कर रहे सी जेड़ा यार देखो यू नो रियल लाइफ सिचुएशंस उत्ते बेस्ड है अपने रिश्ते दे विच चलो कितना कितने किवें दियां प्रॉब्लम्स या डिसएग्रीमेंट्स हुंदियां ने ते जदों आपां गलबात करदे इन्हां चीज़ां बारे तां कुछ ना लर्न करन नूं मिलदा वक्खरे ओपिनियंस जदों सुणदे आ तां कितना कितने आपां एक दूजे तों जिथे लर्न करदे आ नाल दी नाल अपना ओपिनियन बदलदा भी है सो अज असीं गलबात कर रहे हां एक सिचुएशन बारे जिस विच एक कपल है सारे जरूर अपना ओपिनियन दो मुंडे भी कुड़ियां भी बंदे भी ते बुढ़िया भी सो एक कपल है हसबैंड वाइफ ते जनों दोनों चलो जिम जुम जाते हैं मैं दस रहा सी कि जिहड़ा मुंडा वो शाम जिहनूं जांदा लेडी है वह दोपहर जिहनूं जांदी है ते लेडी एक दिन कुड़ी घरे आउंदी है अपने हसबैंड नूं दसदी है कि बई मैं ना जिम शुरू कीती है ते मेरा एक ट्रेनर है वह मैनूं ट्रेन करेगा ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਰ ਆ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੇਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਯਾਰ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਸਕਿਓਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਣਾ 9056733337 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿ ਕਿਸੇ